सचिया पाया कोई ना वो ना गया ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

बिंद के सदैया ताहि हिज की बटैया देत बंदरा सदीव पाए नांग ही फिरत है अंगन अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छेन कैसे तरत है भूत बन चार छित छौना सब दूधाधारी पौन के हरि शोभ जंग जानियत है तृण के भचैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल वृग ध्यान ढानियत है जेते बड ज्ञानी तिनो जानी पर बखानी नाहे ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया के बखानी है फल के भजैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदि से फिरैया दे तो भूत के पछानी है जल के तरज को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी ऋखि कैस नाम के महंत लहियत है माधव भवर और टेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न दाहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है।

देखिया बरागी बन कब सन्यास वेश बन के दिखावई। कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे।

ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गच्छ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो पच उड़ जाएंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे भज, के तक प्रत्यक्ष हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब

तंग न जातक न गायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्धं।

सर्वं न साकेन वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाकेन सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूँ कंज के मंज के भरम भूले, कहूँ रंग के राज के धर्म लूले, कहूँ देश के भेष के धर्म धामे, कहूँ राज के साज के बाज तामे, कहूँ अक्षर के पक्षर के।

हं कहूँ देह दुखम कहूँ औखदी रोग के शोक सोखम कहूँ देव विद्या कहूँ देव बाप कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व के नर कहानी कहूँ राजसी सादगी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ।

गान कीर्तन कहूँ, मलेज भाख्या कहूँ, वेद रीतन कहूँ, नृत विद्या कहूँ, नागबानी कहूँ, गार डूगूढ़ कथा कहानी कहूँ, अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ, वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ, छल छाला धरे छत्रधारी कहूँ, राज

जय सत मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योत बान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय

तीन जमीन जमा जहर चंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग बणंग जय द्वैख न ताक न दुख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग की ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत चुदंग जय तात न मात न भ्रात सुदंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच जुअंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज से तज जेर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बनी बर जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र।

जय राग न रंग न रेख रुखं जय शोक रोग शोक न भोग न जोग जुगं भो भंजन गंजन आदि रंग जय बंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय वेद गतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपे सुत सिंध अधो मुख ताव तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैग कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सफ़ तज है एक चित कृपा निध को जब है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृति एम वेद उचारत सार सुति जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है।

देवनाथ है। समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा। गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धदा। अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेज मानिए सदैव सिद्ध शुद्धदा। प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है। न दो गदाग दक है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है। अदेग शेख भेग है, सदैव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्ववरण है। जिमीज मान के विखे सदैव करम भरम है। अद्वेष है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए सदैव सर्वठौर में।

नतात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है अभेद है, न रंग है न भूप है, परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है, अकंज है अभंज है करी।

द्वय है न भेघ है न दुई है न ध्रुव है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलि अरूप राग।

कूट इंद्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद का दिग वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कूट

कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ शिष्ट को विचार, कवन शिष्ट को भिष्ट है कहाँ सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश। दोहरा

चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामने दमंकन धुप धुजा फुरंकन फणे फुंकारन जोध जिते सरदार विवरखन दुष्ट प्रखरखन दुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो से मै खास मर्दन भूम आकाश अथे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाश।

ब्रिड राज विहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खास मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाश उन्तन नासे ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वि प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रतरखण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खास मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध

दुख दोख रहत जे नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाखो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै अनस सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अन्न विहीन अन्न भंजनाद जल।

जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चरण नहीं रंग रूप।

अत्र के चलैया छेद छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हो के मान है। ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है। पूर्वी न पार बाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पवन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। पारा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी।

चांदनी से चांदा गढ़ के रतते हरे रही मालती से फूल के। फटक से कैलाश कमाऊ गढ़ कांसे बुर से ससे सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा से हिमालय हर हार सी हल बने रहस कैसे हाजपुर देख मोहियत है। चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्रगिर चांदनी से चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के वृदंगी तेरे गीत गाइयत है। वखरी कंधारी गोर कखरी गुरदे जाचारी पौन के आहरी तेरा नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ कीरत

प्यारियो जे नहीं करना होवे ना ते बंदे की करदे हन ते ऊर एवे ना जी कुछ भी गल्लां बातां ला करके जी मैनू बड़ा काम है आ है ओ है। एक तां गल सिद्धी हुंदी है कि कह दियो कि नहीं भाई ए महाराज माफी बख्शो असी नहीं जा सकते आ अपना परिवार है ये नहीं छड़ सकते। लेकिन यह गल होवे तां प्यारियो अपनी जड़ी निरादरी हो जाएगी ते लोकां ने कहना कि देखो भाई महाराज जी का वचन नहीं मन्निया। इस करके कड़े जड़े कोई सियाने लोग होंदे ना प्यारियो कोई काम नहीं करना होवे टाल मटोला करना होवे दूजियां दे उत्ते गल पा देंदे कह देंदे कि नहीं जी उत्थे तां आ है ओ है असीं तां जाना चाहुंदे लेकिन महाराज

0: अकबर भी मर गया, हुमायूं भी मर गया,
1: बाबर बड़न सहत मृत थयो,
0: ते बाबर बाबे बाबर दे वडे जड़े हन तैमूर लंग आदिक ए भी किथे सारे मर मरा गए।
1: अब थिरा नहीं सच जानो,
0: साडा वचन याद रखो, साडा जफरनामा पहुंच गया उदो तक थोड़े दिना दे विच तड़प तड़प करके उन्हें मर जाना।
1: दक्षिण को तुम संग
0: इस करके भाई असी तुहानू कहंदे आ दक्षिण दे वल चलो, साडे नाल चलना करो, पियाना करो,
1: जेकर संग निभाओ चलो,
0: जे भाई साडे नाल हो करके चलोगे
1: सब विद लखो आप।

फूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़ गड़ के पट पट की जाने।

कर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप से अंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संहरो दुष्ट जिते उठवत पाता सकल मलेश करो रण घाता जे असध जताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखद होए मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याय है संत अंत लहेंगे।

0: हेलो हेलो।
1: बोल तू बोल, देख तेरा आता क्या तेरा। तो
2: बोलना
1: अरे तेरा तू आएंगे ना रे वीर।
0: आप सिंगल आ गया? ओके ना, पक्का फुल है ना लेवल? ओके ठीक।
1: अगले वही क्या है ना बैटरी फुल है ना।
0: हेलो।

0: इसको यहाँ वाइट बैलेंस सब प्रॉपर सब सेट कर ले, उसको नीचे चेक करा ले अभी। इसको यहाँ लगा वाइट, इसको वाइट फ्रेम में रखने के बाद में उसको उधर सामने ले जाना है बुलेट के पास, सामने के शॉट अंदर के शॉट जूम इन जूम आउट एकदम क्लीन होना शॉट में, वाइट बैलेंस होना प्रॉपर एकदम स्मूथली वाइट आउट। क्या नहीं आते तो उसके हाथ में कैमरा देने का और यहाँ पे भी कैमरे को खाली खड़े होने का, ठीक है।
1: तवर में अंदर कैमरा लगा रहे थे कभी इसका वीडियो आया और बाद में वाइट बैलेंस है कि नहीं चेक करके बोल मेरे को, अभी वीडियो दिए नहीं थे को, दिंगे थे कभी वीडियो। फोन लगा मेरे फोन पे, तरण के फोन पे फोन लगा रहे थे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर जो है

0: इसको हटाना, इनने कहीं खड़ा पीछे लेके नहीं चला, इसको हटाना बाद में लगाइए ना, बोला रुकना बोला इधर हटा दे। बैटरी कितनी देर चलती है अपनी? अरे रुकना रहना पे रुकेंगे ना अपने, वो टाइम है ना, जरा क्या रुक उसका होगा बड़ बड़ रुक के। तो कैमरा बिक रहा है उसका, मतलब ये कैमरा तुम यहाँ लगाओ या इसको और थोड़ा इधर लेने का। हाँ वो बाबा जी का सिर्फ होता क्लोज रहेगा था फ्रेम उसके, पर इसमें वाइड रहेगा और इसके बाद में तो सामने शिफ्ट करने का, सामने से अंदर का शॉट ऊपर के ये वो सब पूरे शॉट एकदम स्मूथ चलना कैमरा, झटके उठके होना नहीं क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है क्या। उसका वाइड बैलेंस कर लो अंदर दोनों का सेम जगह वाइड बैलेंस करो, इसका भी वही वाइड बैलेंस करो जहाँ उसका करें, दोनों को सेम जगह करो। वो कैमरे पे खाली खड़े होने का कैमरा फिक्स फ्रेम रहेंगे, वो हलिंगा नहीं कैमरा वाइड और कुछ भी नहीं होगा। चलो था तो जा रहा हूँ तेरे हवाले जो बोले तो बाबा जी बात कर लेना
1: यार। चले आओ ना, आए तो देखना तो पड़ेगा।
0: टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है, 15 मिनट।
1: हाँ
2: क्या है ले।

सुख मुख कर संतन की अंतर जामी पुरख विदात शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांग मुख कर संतन की तूरे। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंगुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुहदाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया

जोगी सुल्तान जी तिलक नाम करतार सुकमूर नाम निर्जन काय का कार सत्यम संतोख जगण के विचार दे दे मंगे ससा गुण शोभ के

परवान लखो पर तीरता सहजुग बेबान लक्षुतन संग्राम रण में चुटे प्राण लक्षुति लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना के

चितेंद्र सब को नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ी आपे ही क्रम कराएंदा उड़ा और मेरे सिरे से तंदे लाएंदा नदर पुट्टी जकर सुल्ताना काव कराएंदा।